प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पहो राव कहीं पूपा अंडज जे रज से तजकीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमिट पहयो।

पाई संबद सतरह सहस पणि जय अर्ध सहस फुण तीन कहि जय भाद्रव सुधी अष्टमी रव वार तीर सतद्रव ग्रंथ सुधा हरा।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे तहाय सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत तहन तहन साहिब श्री

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल की तब चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द

सात अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महाभयान दूत जम दलायत केवल नाम संग तेरा चल्लै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उदारी अनग पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस्तरा अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै जेह मार्गे जात अकेला तय हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याय नान गुरमुख परमगत पाइय छूटत नहीं कोट लगबाही नाम जपत पार पराही अनक बिघन जाय संगारे हर का नाम तत्काल उदार है अनक जोन जन्मै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हाउ मैला मल कबूना धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाइय साध कै

बिन बुझे मिथ्या सब पय सफल दे नान घर हर नाम लय बिरथि सागत की आरजा साज बिना के होव सुचा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखावता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन ब्रेथा बिहाय बेग बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम ज्यो कृपन के निरार दाम धन धन ते जन जय घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रह तबर कशबर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत

दर्श बड़भा की पाइय ब्रह्मज्ञानी को बलबल जाइय ब्रह्मज्ञानी को खोजे में सरनान ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाए अदा आखियर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की कीमत कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गाते ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंदर बार नान ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार।

कुंठ मुक्त मोख पाया, एक निम हर के गुण गाय, अनुराज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। भोजन का प्रसंगीत रसना जपती, हर हर नीत भली सुकरणी, शोभा तल मंथिर ते बसे पूर्ण गुरमंत, सा संग प्रभ देहो निवास, सु सर्व सुख नानक प्रकाश लोक, सारगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानक आपे ही फिर जा पष्टपति। जब कार्य काशना दृष्टिता, पापन तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाध, बैर विरोध के संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह जाप, तब हर सो कहो किसे व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह का, कि सुबत परमापन खेल आवृति, जानान करने हार न दूजा, जब होवत प्रभु केवल तनिता, बांध मुक्त कहो किसको घनी, जब एक हर अगम अपार, तब नर्ग सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सह सुभाय, तब शिव शक्त कहो कि ठाए, जब आपे आप अपनी जो धरा, तब कमन ने डर कमन का तो डर, आपन चलता आप घर निहार, नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन, है जन्म मरण कहो कहा बिना आसन, जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो कि सोए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर या गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपने आप आपिय चर्जा, नानक अपन रूप आपिय प्रजा, जय निर्मल पुरख पुरख बतोता, तय बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्भान, तय कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तय शाल चित्र लगत गौ की, जय जो स्वरूपी जो संग समावत, किसे भूकम द्रवतावै, करण करावन करनिहार, नानक करते का रहे समाज, अपनी शोभा आपन संग मनाई, तब कमन माये बाप मित्र सुत भाई, जय सर्वगलापे परवीन, तय बेद देव कहा गौ चेन, जब अपने आप आपता है, तो सगन अब सगन कहा विचार है, अपनु चापन आप नेरा, तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानू आप, जा शाला छेद भे समाया, ऊहा किसे व्याप्त माया, बसु आपे आदेश, तेह गुण का नाही प्रवेश, जय एक है एक एक भगवंता, तय कौन अचंद किस लागे चिंता, जे अपने आप आपति आरा, तय कौन कथे कौन सुनने हारा, बहो बेअंग उचते उच्छा, नानका बसु आपे पहुचा, जाप रजो प्रपंच अकार, तेह गुण में किन्नो विस्तार, पापन तय पई कहावत, गऊ नरको स्वर्ग वंशावत, आल जाल माया जंजाल, में मोह परम पै भार, दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बख्यान, अपन खेल आप कर देखा है, खेल संकोच है तो नानक एक है, जब अवगत भगत आप, जब पसरे पासार, संत प्रताप दुह पाका, आपे तनि उनकी शोभा, उन्हों बने आपे, कौत करे आनंद जो, आपे रस भोगन्द्र जो।

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हारा पेगा विस्तार जात सभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाय तुम ते भिन्न ही किशो अपन सु सब जगत पर होए जागो प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोए जन भाए सो समदर्शी दत का बेता नानक सक शिष्टका जेता जी चंद्र सभता के हा दीन दयाल अनाथ गुनाथ जिस राखे तिस कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जागे सब हाथ अंदर बाहर जानो सात गुण निधान बेअंत बार नानक दास दा बलहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब प्रवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो ब्याप प्रतपाले जीन बाबा जो जो रचो सुत से त्यात जिस भाव तिसलाए मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंदर विश्वास कर मान्या करनार नानक जान्या जल्ला गहर एक नाय तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक हो सेवा बनयाय हुकम बूझ ब्रह्म बद बाईस तो प्रण ही विचार जाके मन वस्या निरंकार बंधन तोर भय निर्भैर अंदन पूजे गुर के पैरे लोग सुखिये पर लोग सुहेले नान खर पर व्यापे मेले सासंग मिल करो आनंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देगा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाव प्राण तरण का यह स्वभाव

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरका सुन उपदेश बाल ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंदर की उदरय चेंद आस अनैत त्यागो तरंग संदना की तूर मन वंग आप छोड़ बेनती करो सा संग अग्न सागर तरह तन के पर लेहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भाज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितो नारायण एक एक रूप जाके रंगा ने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत धारावत रहे लोके निस्तार सबल जीवन सबल तागा संग जागे मन लागा रंग जा जाय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंत करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल मांत के माथे नान कुदरे तनका साथे सन जो सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रे नमृत नाम सात संग लायन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुंदर सना कहते कर प्रसाद या प्रभुधारी नानक निभीखे भमारी प्रभु की उसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख बनी सहज गोबिंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब देव उजबाए स्थान बाहर न होवे आमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रित नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वदाय सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मध सकल देव दास सुंदर चतुर तत का बेता समदर सी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कह मुख पने गुरु नानक नाम भजन मन सुने हुन दान जपे मन कोए सब जुग में तागी कत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद बखाणी सगल मथान केवल हर नाम गोविंद भगत गए मन विश्राम कोट अपराध सा संग मिटे संत कृपा दे जमते छुटै जा के मस्त कर्म प्रभाए साध सर नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तजन आवे हर प्रभ जीत जन्म मरण तागा दुख निवार दुलाभ दे तत्काल उधारे नवल शोभा मन ताकि बानी एक नाम मन माए समानी दुख रोग विनसे बह परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सबदे ऊच ताकि शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मानी।

तीर्थ नावा जेत सुभावा विण पाणे के नाय करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी

साल रुवाल शांत वय प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जौन पुरखे अपार सर्ब मान ते मान देव पेवा दे उदार सर्ब पालक सर्ब कालक सर्ब

चतर चक्र जाने, चतर चक्रवर्ती, चतर चक्र भरती, चतर चक्र पाले, चतर चक्र काले, चतर चक्र पासे, चतर चक्र वासे, चतर चक्र माने, चतर चक्र दाने, चा श्री छंद

है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, उवंगाद रूपे, अनाद स्वरूपे, अनंगी नामे, त्रिपंगी, त्रिकामे, त्रिभग

कह दुखे अवर्ण को मारन वारा जियो हमारा जियो देन हारा रहाओ ना उस बंधन ना हम बाधे ना उस धंधा ना हम धादे ना उस मैल ना हम को मैला उस आनंद ता हम सद केला ना उस सोच ना हम को सोचा ना उस लेप ना हम को पोचा ना उस भूख ना हम को तृष्णा जा ओहो निर्मलता हम जचना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछ एको सोई नानक गुर खोए भ्रम भंगा हम ओए मिल होए एक रंगा आसा महला पंजवा अनक भांत कर सेवा करिए जियो प्राण धन आगे धरिए पानी पखा करो तज

साई सुहागण जो प्रभ भाई तिसकै संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनहार उनकी रेन बसै जी नाल माथा भाग तपावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब नेमा कर्म धर्म अर्पो सब होमा गर्भ मोह तज हो बोरेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आराधो दिन सुरैन ए सेवा साधो भय कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बखसिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे न कोई प्रभ की प्रीत हों मैं मल खोए प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए सुनहो मीत ऐसा प्रेम प्यार जी प्राण घड़ घड़ आधार रहाऊं प्रभ की प्रीत भय सगल निदान प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम प्रभ की प्रीत सद शोभा बंत प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत प्रभ की प्रीत इह भव जल तरै प्रभ की प्रीत जमते नहीं डर प्रभ की प्रीत सगल उधार प्रभ की प्रीत चलै संगार आपो कोई मिले न भूलै जिस कृपाल तिर साध संग घूलै कहो नानक तेरा कुरबान संत ओट प्रभ तेरा तान आसा महला पंजवां भूपत होय कर राज कुमाया कर कर अनर्थ बिहाजी माया संचत संचत थैली कीनी प्रभ उसते डार अबर कौदीनी काज गगरिया अंब मझरिया गर्भ गर्भ ओआहू मह परिय रहाओ निरपो होयो भया निहंगा चीत न आयो करता संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निकसया फूक ता होए गयो स्वाहा उचे मंदर महल अर रानी हस्त घोड़े जोड़े मन भानी बड़ परवार पूत अरतियां मोहे पचे पच अंधा मुआ जिन्हें उपाहा तिन्हें बनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवां इन स्यों प्रीत करी कनेरी जो मिलिया तो बदै बधेरी गल चमड़ी जो छोड़े नाही लाग छुटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाही निर्गुर मिल्यो बजी बाधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होई कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी डीठी अगरक उसके बड़े ठगाऊ छोड़ नाही बाप न माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरै मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवां आठ पहर निकट कर जान प्रभ का किया मीठा मन एक नाम संतन आधार होए रहे सबकी पगछार संत रहत सुनो मेरे भाई ओआ की महिमा कथन न जाई रहाओ बर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्तर जाके एक समान प्रभ अपने बिन अबर न जाने कोट कोट अग काटन हारा दुख दूर करन जी के दातारा सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संति छली ताका संग बादशाह सुरदेव अमोग दर्श सफल जाकी सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत टहल दी जय गुणतास आसा महला पंजवां सगल सुख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुण गाम महा पवित्र साध का संग जिस भेटत लागे प्रभ रंग गुर प्रसाद ओए आनंद पावे जिस मृत मन होए प्रगासा ताकि गात मित कहन न जावे रहाओ
ਭਰਤ ਨੇਮ ਮੱਜਨ ਤਿਸ ਪੂਜਾ ਬੇਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਨ ਸਿਮਰਤ ਸੋਨੀਜਾ ਮਹਾਪਨੀਤ ਜਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸੋ ਜਨ ਸਗਲੇ ਭਵਨ ਪਤਤ ਪਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ ਜਾ ਕੋ ਭੇਟਿਓ ਹਰ ਹਰ ਰਾਹੇ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਥਨ ਨ ਜਾਏ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਤੇ ਆਵੋ ਉਨ ਸਾਧਾਂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋ ਮੋਹਿ ਗਰੀਬ ਕੋ ਲਿਹੋ ਰਲਾਏ ਨਾਨਕ ਆਏ ਪਏ ਸਰਣਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਠ ਪਹਿਰ ਉਦਕ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਸਦ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਤਿਸ ਲਾਗਹਿ ਪਾਈ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਦੇ ਵਰਹਾਓ ਘੰਟਾ ਜਾ ਕਾ ਸੁਨੀਆ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਆਸਨ ਜਾ ਕਾ ਸਦਾ ਬੈ ਕੁੰਠ ਜਾ ਕਾ ਚਵਰ ਸਭ ਉਪਰ ਝੂਲੈ ਤਾ ਕਾ ਧੂਪ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲੈ ਘੰਟ ਘਾਟ ਘਟ ਸੰਪਟ ਹੈ ਰੇ ਜਾ ਕਾ ਅਭਗ ਸਵਾ ਸੰਗ ਹੈ ਸਾਧਨ ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਮਾ ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਸੰਤ ਚਰਨ ਉਹ ਆਇਓ ਸਰਨਾ ਹਾਥ ਚੜਿਓ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਦਾਨ

ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਨਿਵਾਹੇ ਠਾਕਰ ਆਇਓ ਆਹਿ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ ਸਕਾਰਥ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਵਸਾਹੇ ਇਹ ਮੁਕਤਾ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ਰਾਖੋ ਸੰਤ ਸੰਗਾਹੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ठाकर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कुमाया गुण रस रस गावे एक आसा दर्स प्यासा आन न पावे दया तुहारी क्या जंत बिचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावहु हृदय बसावहो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आई है सर्व फल पाईय सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवां हार बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हो कर्म कमावै बाध्यो नलनी भ्रम सुआ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

चौथ महल्ला पंचमा। हाँ माँ दो हम ऐसे तुम ऐसा, माँ दो हम ऐसे तुम ऐसा, हम मैले तुम उजल काते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चित्र स्याने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माँ दो हम ऐसे तू ऐसा, माँ दो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड, नीको ठाकर देसा, हम पापी तुम पाप खंड, नीको ठाकर देसा रहो। तुम सब साजे साज नवाजे, जियो पिंड दे प्राण, जियो पिंड दे प्राण, जियो पिंड दे प्राण, निर्गुण आरे गुण ने कोई, तुम दान दियो मेहरबान, निर्गुण आरे गुण ने कोई, तुम दान दियो मेहरबान, तुम दान दियो मेहरबान, तुम करो भला हम भला न जानो, तुम सदा सदा दयाला, तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बदाते, तुम राखो अपने बाला, तुम सुखदाई पुरख बदाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जीत जन सब जाचे, तुम निदान अटल सुल्तान, जीत जान सब जाचे, कहो नानक हम हे हवाला, राख संतन के पाछे, कहो नानक हम हे हवाला, राख संतन के पाछे, गौड़ी महला पंजमा, फिर कर्म।

0: शरण परे प्रभु अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी शरण परे प्रभु अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी वाहे गुरु एक तू ही एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू ही एक तू एक तू ही चाचरी शन गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरिंकारी नाम में अकाम गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरिंकारी नाम में अकाम ढाडी दरपा मंगना दर कदे न छोड़े मन रता गोविंद संग सच भोजन जोड़ मन रता गोविंद संग सच भोजन जोड़ प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती घोड़े प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती घोड़े राज मेले खुशियां कणी ताए भुख ना मोड़े राज मेले खुशियां कणी ताए भुख ना मोड़े ढाडी दरपा मंगना दर कदे न छोड़े ढाडी दर पा मंगना दर कदे न छोड़े नानक मन तन चाओ नित प्रभु को लोड़े नानक मन तन चाओ ए नित प्रभु को लोड़े तन तन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की प्रभु बेनती अपनी भगती लाए तन तन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकर ऊच भगवान नानक की द्रा बेन अपनी भगती ला धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कोट कोट प्रणाम भुल चुक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धन्यवाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने स्वादा बल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल उठ गए शबा मलेश की कर कूड़ा प्रसार डांका वाजे फतेह का निरंकार अवतार नानक गुरु गोबिंद सिंह पूरन गुरे अवतार जगमा ज्योत बराज जी अब चल नगर मजार श्री सच खट गए दरबार श्री सच खट गए सलवार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु
1: सतनाम।